0: दोबारा करनी पड़ी अंकल।
1: यार एकदम।
0: हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ थोड़े फेवरेट शो बॉबीज पंजाबी टॉक शो के इस लाइव सैशन में। लास्ट वीडियो एक्चुअली थोड़ी जी डिस्टरप्ट हो गई सी, सो आप दोबारा तो थानू मिलाने अपने मानयोग अंकल हरवंत सिंह चौहान जी ना। हाँ जी सत श्री अकाल अंकल जी,
1: रिस्पेक्टेड रेजिडेंस ऑफ क्रिफत, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सिख नौजवान सभा के मैंबर्स, सबना नू लोकल कम्यूनिटी 2MOI की टीम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल प्रणाम नमस्ते। अज 24 सितंबर 2026 दिन वीरवार रात्रि दास हरवंत सिंह चौहान 95.1 FM ते ऑन एयर आप दी सेवा दे विच हाजिर होया है। दास अज एक हिंदी सोंग अते एक पंजाबी सोंग पेश करन दी निमाणी दी कोशिश करेगा। इस तो अलावा कुछ पंजाबी लोकगीतां दीआं धुनां पेश करन दी निमाणी दी कोशिश करेगा।